0: किसी से न तमाम वजह दे बाहर को माता से रिता थी फल नो नियो बोले अफेट जो वाचा साउदी बाकुमला से न पूजा बक्की ने पिसल
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.